कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।

का घर है हमारे सभी सुनने वालों की सेवा में। मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और अदा बरसों। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों, आज शनिवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह, शुभ दिन, शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0325 65 65 60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, आईपैड के जरिए, कंप्यूटर के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए दुनिया की कोने कोने में ये प्रोग्राम भी सुनाई देता है। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरी हरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी

रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। सुनने वालों आज शनिवार का दिन है, भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। चले अगला भजन जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में, भजन होगा पंडित जय शंकर जी की आवाज में जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

और रेडियो SBS के जरिए सुंदर भजन पेश की गई पंडित जय शंकर जी की आवाज में अभी आपने सुना। अगला भजन जो पेश किया जा रहा है एक सुंदर सा भजन होगा विपिन की आवाज में।

रेडियो SBS की जरिए सुंदर भजन प्रणव की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार एक सुंदर भजन सोनू निगम की आवाज में पेश किया जा रहा है। एक भजन जो हमारे बहुत से सुनने वालों भी पसंद करते हैं। आज की

दर्शा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये सुंदर भजन की ओर।

सुंदर और अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं श्री हनुमान चालीसा की ओर, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में। आप जरूर सुनते ही रहना।

सुंदर सा श्री हनुमान चालीसा बस प्रोग्राम में गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये पेश की गई है। चलिए प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से भी आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

सुनने वालों की सेवा में एक बार फिर से सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ों। रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। शनिवार का दिन 25 तारीख जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को भी एक खूबसूरत सुहाना वीकेंड पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस का पूरा टीम के तरफ से। आज का मौसम भी खूबसूरत सुहाना मौसम होने वाले है। टेम्परेचर कहीं कहीं 25 तक खराद

संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जाएगी 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक। कुछ मिले जुले नखमे, कुछ नए फिल्मी गाने आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जाएगी। और ठीक 12 बजे से मृत्यु समाचार यानी कि दुख की खबर आप सभी सुन वालों की सेवा में उकारा जाएगा। ठीक 12 के वक्त मृत्यु समाचार आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। उसके बाद लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जाएगी तकरीबन दो जाएगा। ठीक 12 के वक्त मृत्यु समाचार आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। उसके बाद लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जाएगी तकरीबन 2 बजे तक जरूर और

ओपनिंग सिलेक्शन की ओर। सबसे पहले गर्मा गर्म कॉफी चाय बस आप सभी सुनने वालों के लिए बस पेश किया जा रहा है। तो चले पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम का पहला गाना की ओर। पुरानी फिल्म मेरे सनम विश्वजीत का और आशा पारेख का एक्टिंग किया हुआ फिल्म है, फिल्म मेरे सनम।

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में आई डो फिल्म मेरे सदा मुसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो वेस्ट भी इसका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। चले प्रोग्राम में एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आपकी बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज में।

और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आज की प्रोग्राम में। हम आपको ले चलेंगे किशोर और लता जी की ओर। अबकी बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, खूबसूरत प्यार भरी गाने नखमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए पेश किया जा रहा है। अपने प्यार के सपने सच हुए,

कुमार एन लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुन वालों की सेवा में अपने प्यार के सपने बस सच हुए। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322-66611। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा आप स्टूडियो की ओर तार कर सकते हैं।

काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है रेडियो SBS की जरिए। शहर उत्तरक से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में उषा खन्ना एंड सुरेश वदकर प्रोग्राम में।

0: draaiende hits waar jij van houdt. Dit is Radio SBS.
1: चले प्रोग्राम में अभी बार मेहदी हसन और महनास की ओर हम आपको ले चलते हैं। एक खास पाकिस्तानी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और गाना का बोल है दो साथी जीवन के।

जीवन के मेहदी हसन और मेहनाज की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में मुकेश और लता जी की ओर।

रेडियो SBS के जरिए खासगाना किशोर कुमार की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। लाइव के जरिए रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और वो भी शहर उत्तराखंड से। ये प्रोग्राम सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे। अब की बार प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में खूबसूरत सा गाना होगा, और गाना होगा खासतौर पर मुकेश और लता जी की आवाज़ में।

गुप्ता जी की आवाज में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

11 बजे प्रोग्राम में मृत्यु समाचार यानी कि दुख की खबर आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगी। परवाही से हुआ या कोई भी खबर रिक्लाम आपको देना है या मृत्यु समाचार, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 030-265-65-60। मेल भी आप कर सकते हैं या तो रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं, रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए। चलिए प्रोग्राम में लता जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है, सपनों का सौदागर फिल्म का नाम

ललिता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई सपनों का सौदागर, उसी फिल्म का गाना अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। और खास तौर पर देनहा शहर की रहने वाली उषा ये गाना आज की ये प्रोग्राम में सुनना चाहते थे और इसी तरह से पेश की गए। आज सुना उम्मीद है गाना सुनकर और काफी पसंद किया है। 030-262-6611 स्टूडियो का तार की नंबर है और इसी तार की नंबर पर भी आप रेडियो SBS का ऐप पर ऐप कर सकते हैं।

ढारी स्त्रात का रहने वाला राजन गिरधारी भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। इस वक्त गार्डन में टाउन में बैठे हुए हैं, गर्मा गर्म कॉफी चाय लेकर के और रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं। आपको भी शुभ दिन शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। और राजन गिरधारी भी एक खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है सब ही सुनने वालों के लिए। दुल्हा दुल्हन फिल्म का नाम, माइटी मुकेश की आवाज में यह गाना पेश किया जा रहा है।

लेट सरेंग गिरधारी स्त्रात का रहने वाला राजन गिरधारी का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना आपके साथ इस वक्त हजारों हजारों सुनने वालों दुनिया की कोने कोने में रेडियो एसबीएस का ये प्रोग्राम को सुनते हैं। Deems Drive 237 शहर उत्तराखंड से ये प्रोग्राम हॉलैंडेस से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। बहुत से सुनने वालों है जो देश में भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं, सभी को वेलकम स्वागत किया जा रहा है और प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। और उत्तराखंड शहर का रहने वाला श्रीमान किशोर इस वक्त प्रोग्राम सुनते हैं और एक खूबसूरत गाना एड फिल्म आन फिल्म का गीत मांग किया है मोहम्मद रफी की आवाज में।

रेडियो एसबीएस की सुनिए ये खास गाना बस प्रोग्राम में मोहम्मद रफी की आवाज में पेश की गई और फिल्म का नाम आन, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई। उत्तराखंड शहर का रहने वाला श्रीमान किशोर का मांगी हुई गाना पेश की गई। आपको भी शुभ दिन शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। देश विदेश में भी सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं, मॉरिशस में, दुबई में, इंग्लैंड में और ऐसे दुनिया की कोने कोने में सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं। इंडिया भारत देश में भी काफी सुनने वालों होते हैं जो हमारा प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि धर्मेंद्र चौहान। धर्मेंद्र चौहान भी हमारा प्रोग्राम अलीगढ़ में सुनते हैं और आज के प्रोग्राम में एक खास गाना मांग किया है हेम लता जी की आवाज में। तो चले मिलकर सुनते हैं इंडिया भारत देश का रहने वाला धर्मेंद्र चौहान का खास मांगी हुई गाना।

एक बड़ी ही खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। और मांग करने वाला था खास तौर पर ये खूबसूरत गाना इंडिया भारत देश का रहने वाला धर्मेंद्र चौहान का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। धर्मेंद्र आपको शुभ दिन शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और इसी तरह से रेडियो SBS का प्रोग्राम बस सुनते ही रहना। जो हॉलैंड देश से बस 40 साल से ज्यादा बस पेश किया जा रहा है। चले अब की बार द माइटी मुकेश की ओर हम आपको ले चलते हैं। देना शहर की रहने वाले हैंक और सिंथिया, हैंक और सिंथिया गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया है मुकेश जी की आवाज में और फिल्म का नाम है होली आई रे।

माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश की गई और मांग करने वाले डेनहाग शहर के रहने वाले हैंक और सिंथिया ये गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। आप लोगों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है, शुभ वीकेंड और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। रोटरडम शहर के अंदर इस वक्त नौकरी पर है, काम पर है, लेकिन फिर भी रेडियो SBS का प्रोग्राम सुनते हैं। रोटरडम शहर की रहने वाली सबीना आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है, शुभ वीकेंड के साथ एनिक्सोस वेरक्स। और अगर हो सके तो रेडियो SBS का प्रोग्राम समय समय पर जरूर सुनते ही रहना। गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे फिल्म सवेरे वाली गाड़ी। सवेरे वाली गाड़ी फिल्म का नाम है। लता जी की आवाज में गाना आप सुनेंगे और खीटन शहर की रहने वाली रखीना ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है। सवेरे वाली गाड़ी फिल्म का नाम, सॉन्ग बाय लता मंगेशकर। रखीना ये मांगी हुई गाना पेश किया जा रहा है। खीटन शहर की रहने वाली है

वाली गाड़ी है, फिल्म का नाम उसी फिल्म से, लता जी की आवाज में ये गाना बस भी इसकी गए। और खीटन शहर की रहने वाली रखीना की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। अक्सर उम्मीद है गाना सुनकर और काफी पसंद किया है। शुभ दिन और एक शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। शनिवार का दिन है, 25 तारीख जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों को। शुभ दिन और रेडियो SBS का प्रोग्राम सुनते ही रहना, हर एक को बस खबर करते ही रहना। DAB प्लस रेडियो की जरिए ये प्रोग्राम भी सुनाई देता है पूरा की पूरा हॉलैंड देश के बीच में, मेडन नीदरलैंड में, दूर दूर शहरों तक और प्रोविंसी साइड हॉलैंड में, दूर दूर शहरों तक ये प्रोग्राम DAB प्लस द्वारा आप सुन सकते हैं मौतकार में अपना घरों में। सुन वालों आपको खबर किया जा रहा है ठीक 12 बजे अफसोस के साथ मृत्यु समाचार पेश किया जाएगी। ठीक 12 बजे प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप जरूर सुनते ही रहना और हर एक को भी खबर कीजिए कि रेडियो SBS की जरिए ठीक 12 बजे मृत्यु समाचार पेश किया जाएगी। अपना मोबाइल टेलीफोन की जरिए, मोबाइल फोन की जरिए भी हमारा प्रोग्राम दुनिया की कोने कोने में आप सुन सकते हैं। जरूर आप जाइए रेडियो SBS का वेबसाइट पर radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट की जरिए प्रोग्राम आप सुन सकते हैं, मेल भी आप कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। स्टाफोर्ड शहर में शांति मटाओ भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। और आज की सुबह के प्रोग्राम में पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में गाना मांग किया है, फिल्म का नाम मैं तुलसी तेरे आंगन की, टाइटल सॉन्ग आप प्रोग्राम में सुनते ही रहना इसी फिल्म का, लता जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है। स्टाफोर्ड शहर की रहने वाली शांति मटाओ की।

आंगन की मैं तुलसी तेरे आंगन की उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग प्रोग्राम में पेश की गई लता जी की आवाज में। स्थापोर शहर की रहने वाली शांति माताओं की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। शुभ दिन पेश किया जा रहा है, शुभ वीकेंड, और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। उसी सुनने वालों है जो प्रोग्राम सुनते हैं और स्टूडियो के अंदर तार जोर तोड़ से अंदर आते हैं, रेडियो SBS का ऐप पर सुनने वालों जोर तोड़ से ऐप कर रहे हैं। चले आपकी बार फेल्टहोफन शहर की ओर, हम आपको ले चलते हैं वहां पर। चंद्रा भोला सिंह भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और आज की प्रोग्राम में अपनी फेवरेट भरी गाना मांग किया है। फिल्म का नाम अभिलाषा, पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में फेल्टहोफन शहर की रहने वाली चंद्रा भोला सिंह ये गाना मांग किया है।

का गीत पेश की गए मोहम्मद रफी की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना और खास तौर पर फेल्थोफन शहर की रहने वाली चंद्रा भोला सिंह की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। चंद्रा आपको भी शुभ दिन शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। काफी खूबसूरत गाना आपने मांग किया है और मुझे मालूम है कि आपका क्या कहिए आपकी फेवरेट भरी गाना ये है वादिया मेरा दामन। 12:24 यानी कि 12 मिनट बाकी है सुबह 11 बजे में। सुनने वालों आपसे हम ये गुजारिश करना चाहेंगे कि स्टूडियो की ओर मत तार कीजिए या ऐप कीजिए गाना के लिए, इसलिए कि आहिस्ता आहिस्ता पुरानी फिल्म में संगीतों का प्रोग्राम खत्म होने पर आ रहा है। दो गाने और पेश होगा। मॉरिशियस का रहने वाला दुशन जिंगरी एक खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है। फिल्म का नाम है प्रेम नगर। सोमभाई लता जी की आवाज में, लता मंगेशकर की आवाज में गाना आप सुनेंगे और मॉरिशियस देश का रहने वाला दुशन जिंगरी ये खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है आप सभी सुनने वालों के लिए।

प्रेम नगर फिल्म का गीत पेश की गई लता जी की आवाज में। मॉरिशस का रहने वाला दूषण जिंगरी ये गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया आप सभी और सभी सुनने वालों के लिए। दूषण आपको भी शुभ दिन शुभ वीकेंड और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना, हर एक को बस खबर करते ही रहना। आहिस्ता आहिस्ता पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम खत्म समाप्त होने पर आ रहा है। सुनने वालों हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 21, 22, 23 अगस्त 21, 22, 23 तारीख अगस्त मिलन समर फेस्टिवल होने वाले हैं इस साल साइड पार्क डेन हाग शहर के अंदर में, जहां पर हजारों लोग आते हैं। तरह तरह की स्टैंड यहां पर होते हैं, खाने पीने के लिए हर एक सामान यहां पर होते हैं। 21, 22, 23 अगस्त 21, 22 और 23 तारीख अगस्त मिलन समर फेस्टिवल डेन हाग शहर साइड पार्क में होने वाले हैं। फॉर द 42th ईयर द एर्स्ट एंड द ग्रोटेस्ट मिलन जो हॉलैंडिस के अंदर में होते हैं। और आप सभी सुन वालों को खबर किया जा रहा है फ्राइडे 21 अगस्त लाइव फ्रॉम त्रिनिदाद फुल म्यूजिक ग्रुप डीले नादान के साथ लाइव स्टेज पर पोडियम पर हाजिर होंगे मशहूर गाने वाला रेमोन रामनारायण। तो अपना टिकट आप जरूर खरीदिए मिलन स्विमर फेस्टिवल .nl वेबसाइट पर। उसी वेबसाइट पर तरह तरह की इंफॉर्मेशन इन्फो दिया जा रहा है। ओक फॉर ग्राम फरहूर इसी वेबसाइट पर आप जाइए। चलिए एक आखिरी पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है और डेन हाग शहर की रहने वाली कमला ये गाना मांग किया है जहरा फिल्म का नाम लता जी की आवाज में।

0: आखिर पुरानी फिल्म का गीत और आखिर सुनबलू की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई लता जी की आवाज में। अभी आपने सुना देनहाग शहर की रहने वाली कमला की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनबलू की सेवा में। सुनबलो यहाँ तक पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश की गए। कल रविवार है, कल सुबह 9 बजे से फिर पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना, जो आप सभी सुनबलो की सेवा में बस पेश किया जाएगी।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में 14 मिनट व्यतीत हो चुका है 11:00 और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना।

रेडियो SBS की जरिए ये खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए, चाहे दूर हो चाहे पास हो, रोमांटिक सॉन्ग बस प्रोग्राम में पेश की गए आज शनिवार की सुबह की प्रोग्राम में। 10 मिनट बाकी है सुबह साढ़े 11 बजे में और आप रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुन रहे हैं।

गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई दिल भर मेरे सुडबलू रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL अभी ठीक 12 का वक्त 12 बजे प्रोग्राम में अफसोस के साथ मृत्यु समाचार पेश किया जाएगी। चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर, तुम्हारी

जिंदगी प्यार का गीत है, फिल्म साउथन उसी फिल्म का गाना नई आवाज में, नई संगीत में आप हर के लिए बस पेश की गए। 7 मिनटों ओवर 11:30 स्टूडियो टाइम हो चुका है। 030-2-62-66-11 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर इसी तार के नंबर पर हमेशा भी आप रेडियो SBS का ऐप पर ऐप कर सकते हैं।

सौ साल पहले गाना जो पेश की गए आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए भी आपने सुना। शुरू तरह से रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है लाइव। ये प्रोग्राम आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम सुनाई देता है। अपना इंटरनेट रेडियो पर जरूर तलाश कीजिए रेडियो SBS को। एक और पुरानी

गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए हैं। एक नई आवाज नए संगीत में ये गाना जो लाया गया है और इसी तरह से रेडियो एस बी एस की सर ये बस पेश की गई। बहुत सी कॉम्प्लीमेंट्स अंदर आते हैं और काफी सुनने वालों बस अपना अपना रिएक्शंस देते हैं तार द्वारा रेडियो एसबीएस का ऐप के जरिए। सभी को शुक्रिया धन्यवाद कि आप सभी को ये नगमे काफी पसंद आते हैं।

आप सुनने वालों रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। यहाँ से प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। कोई चल दिया है अकेला, कोई रह गया है अकेला, ऐ दुनिया के मालिक तूने कौन सा खेल खेला। प्रोग्राम में मृत्यु समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए अर्थात गौर फरमाइए। देनहाग शहर से समस्त दुखित परिवार सतीश और हरप्रीत राम प्रसाद और समस्त लड़कन बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। वोसदाग 22 जुली बुधवार 22 तारीख जुलाई सुबह 4 के वक्त 79 साल नेखनन 57 साल की आयु में सतीश राम प्रसाद के फुआ, हरप्रीत राम प्रसाद के फुआ सास, दो लड़कन सोहम और स्वर के आजी, देनहाग खैस्त्रन वेह के रहने वाली एर्ना सुशीलावती राम प्रसाद की मृत्यु हो गई है, जिन्हें लोग एर्ना के नाम से पहचानते थे और स्वर्गीय सुखराम जयराम जीबोत ब्लाका किशोर के पत्नी थे। अर्थी सोमवार 27 तारीख जुलाई मानदाग सुली स्मेडक्स ओम क्वाटफोर द्री क्रेमटोरियम इपन होफ होफलान नंबर 18 डेल्फ शहर में डाक क्रिया की जाएगी। आरनहेम शहर से समस्त दुखित परिवार राम प्रसाद और बधाई और समस्त लड़कन बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। वोसदाग 22 जुली वोसदाग 22 तारीख जुलाई सुबह 4 के वक्त नेखनन 79 साल की आयु में सुदेश बधाई के फुआ सास, मीला राम प्रसाद के फुआ, अंजलिना बधाई के नानी, अश्विन भान सिंह के ननिया सास, देनहाग खैस्त्रन वेह के रहने वाली एर्ना सुशीलावती राम प्रसाद की मृत्यु हो गई है, जिन्हें लोग एर्ना के नाम से पहचानते थे और स्वर्गीय सुखराम जयराम जीबोत ब्लाका किशोर की पत्नी थी। अर्थी मानदाग 27 जुली सोमवार 27 तारीख जुलाई स्मेडक्स ओम क्वाटफोर द्री क्रेमटोरियम इपन होफ होफलान नंबर 18 देनहाग शहर में डाक क्रिया की जाएगी। जिन लोग इस मृत्यु समाचार के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे या समस्त दुखित परिवार को आप शोक सहानुभूति पेश करना चाहेंगे तो तारकी नंबर आपको दिया जा रहा है 9-6-49-46-44-44 और दूसरा तारकी नंबर है 9-6-85-28-30-01। एर इस गेन बैठक अन हाउस निवास स्थान पर बैठक नहीं है। सुन वालों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है खबर को और जान पहचान वालों तक पहुंचा देने के लिए रेडियो SBS इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिन में शोक सहानुभूति पेश कर रहे हैं और ऊपर वाला से यही प्रार्थना किया जा रहा है इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिन में पूरा पूरा शक्ति देने के लिए। रेडियो SBS आप लोगों के दुख में पूरा और पूरा शामिल है। इसी तरह से रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर जो पेश की गई है।

0: Voor alle informatie is Radio SBS 24 uur bereikbaar op telefoon 030 265 65 60.
1: सुन वालो रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। 12 बजकर प्रोग्राम में 11 मिनट व्यतीत हो चुका है। इसी तरह से प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर आपने सुना। मृत्यु समाचार आज शाम में 6 बजे फिर से प्रोग्राम में पुकारा जाएगा। रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना और हर एक की कानों तक ये खबर जरूर आप पहुंचा दें।

अति सुंदर भजन आज के ये प्रोग्राम में पेश की गई है रेडियो SBS की जरिए। सुनने वालों एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को खबर किया जा रहा है कि आज शाम में 6 बजे मृत्यु समाचार एक बार फिर से पुकारा जाएगा।

minuten voor half één studiotijd हो चुका है. यहां से हम आपको ले चलेंगे हमारा आगामी प्रोग्राम में लोकल टाइम का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में हर शनिचर शनिवार दोपहर के वक्त में पेश किया जा रहा है तकरीबन 2 बजे तक. तो लोकल टाइम का प्रोग्राम आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना. पहला गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है जरूर और जरूर सुनते ही रहना.

ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। प्रकाश की आवाज में गाना भी आपने सुना। चले अब की बार एक चटनी गाना बस।

ये सुनने वालों की सेवा में। बाहर खूबसूरत सुहाना मौसम है, गर्मी सा मौसम है, तो हम आपको ले चलते हैं सविता सिंह की ओर।

सविता सिंह की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में संदीप सिउदीन और मिस रे

संदीप स्वीडन और मिस रेनुका की आवाज में ये गाना बस पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की सरिया अभी आपने सुना। शहरू तरह से रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर आप सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं।

आप सभी सुनने वालों की सेवा में हमारी एक सुनने वालों है जो ये गाना सुनना चाहते हैं आज की लोकल टाइम की प्रोग्राम में, सविता सिंह किंग सेलेक्टर और साधना लीला की आवाज में।

ये प्रोग्राम में पेश की गए रेडियो SBS की जरिए। सुनने वालों आपको मालूम होगा कि फ्राइडा 21 अगस्त मिलन समर फेस्टिवल साइड पार्क डेन हाग शहर में लाइव ऑन स्टेज रहेंगे फुल म्यूजिक ग्रुप के साथ, दिले नादान म्यूजिक ग्रुप के साथ रेमोन रामनारायण। मिलन समर फेस्टिवल फ्राइडा 21 अगस्त लाइव ऑन स्टेज फुल म्यूजिक ग्रुप के साथ।

समर फेस्टिवल में ये मशहूर गाने वाला रहेगा रेमोन रामनारायण, अपना फुल म्यूजिक ग्रुप लेकर के दिले नादान। अपना टिकट आप जल्द से जल्द खरीदिए मिलन स्विमर फेस्टिवल .nl पर। रेमोन रामनारायण फ्राइडे 21 augustus

साथ ये मशहूर गाने वाला रहेंगे मिलन समर फेस्टिवल में फ्राइडाग 21 अगस्त। अपना टिकट जो है जरूर आप खरीदिए मिलन समर फेस्टिवल .nl वेबसाइट की जरिए। ग्रेस अल्फन आन द राइन शहर में भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। ग्रेस एन हेलो गुडमिदाग शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। दविंदर सिंह प्रोग्राम

सुन वालो रेडियो SBS का स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। इसी तार की नंबर पर, स्टूडियो का तार की नंबर पर आप हमारा रेडियो SBS का ऐप पर ऐप भी कर सकते हैं।

चले प्रोग्राम में ये खास गाना की ओर, और इस गाना के बाद रेक्लाम, न्यूज, मौसमी समाचार और फरकीर्स इन्फॉर्मेशन पेश किया जाएगी। उसके बाद आखिरी घंटे

0: में आज के ये प्रोग्राम भी अभी आपने सुना, सर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, चलिए अब की बार प्रोग्राम में गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर। आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जो रेडियो SBS के जरिए पेश किया जा रहा है, और गाना आप सुनेंगे अमित की आवाज में।
1: मजा क्या आएगा दिल लेने देने के लिए, जो देना है तो अभी दे दो, जो लेना है तो अभी।

हंसरोमी देखिए गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS के जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 032-62-66-11 इसी तारीख नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। चले प्रोग्राम में आपकी बार सागर मलिक की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो पेश किया जा रहा है

और सभी सुनने वालों की सेवा में लोकल टाइम का प्रोग्राम बहुत से सुनने वालों बस इस वक्त सुनते हैं। सभी को वेलकम कहा जा रहा है जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। चले प्रोग्राम में एक बार फिर से उमर की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो एसबीएस का।

राणा का गाया हुआ गाना उमर की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। टेम्स रेफ 237 शहर उत्तरेख से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का। चले प्रोग्राम में अब की बार गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए आज की इस लोकल टाइम के प्रोग्राम में जरूर और जरूर सुनते ही रहना। एक बार फिर से आज की प्रोग्राम में लोकल टाइम के प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं और वो भी खासतौर पर विम डमरी की ओर।

विम दमरी और साथियों की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो बैठेगी। गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई है। लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए, जरूर आप सुनते ही रहना।

हीरा मुझे मिल जाए, गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, आज की लोकल टाइम का प्रोग्राम का एक आखिरी गाना पेश किया जा रहा है और इसी गाना के साथ हमें इजाजत और आज्ञा दीजिए। हमारा आज का प्रोग्राम सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आप सभी सुन वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। मैं था आपका खिदमत।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आर जे अंशुली रामलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिट इज यू आर जे अंशुली रामलाल, दू यू हार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। Wil je reageren? Kan het altijd? Surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met de studio naar 032-62-66-11. Voor alle andere info kunt u bellen met 032-65-65-60. En beginnen we meteen met het eerste liedje van vandaag en dat is...

भी सरफिरा तू भी सरफिरीज, खसोंग दोर सिद्धार्थ माधव, नीति मोहन एंड करण मेहता एंड कम द फिल्म कट्टी पट्टी एंड द फिल्म कभी अलविदा ना कहना कम द टाइटल सॉन्ग, खसोंग दोर अलका याचनिक एंड सोनू निगम।

मेरी जोहर जवी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवां। तुझ पे कुर्बान मेरी जान फिल्म वक्त से आपने सुना मन्ना दे की आवाज़ में और रेडियो SBS FM के प्रोग्राम में आप सुनिए अगला गाना। के की आवाज़ में आप सुनिए फिल्म गैंगस्टर से भीगी भीगी सी है रातें।

सुन मेरे हम सफर, क्या तुझको इतनी सी भी है खबर इस सौंदर अखिल सचदेव एंक्वा माय द फिल्म बद्री की दुल्हनिया। आयो द फिल्म मैंने दिल तुझको दिया, कंठ को सौंदर सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान, मैंने दिल तुझको दिया। इन प्रोग्राम गीतों के लहर फिया रेडियो SBS।

मैं फिर भी तुमको चाहूंगी इज आउट ऑफ द फिल्म हॉल गर्लफ्रेंड एंड इज सॉन्ग दो अरिजीत सिंह एंड शशा तिरुपति. हाउ द फेदर मैट जुबेर नौटियाल मैट आउट ऑफ द फिल्म सनक. सुना है तेरे दिल पे मेरा, कहीं ना कहीं नाम लिखा है.

तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के। इस आयुध फिल्म पर रिंदा खसंगदोर आशा भोसले एंड सुरेश वाडकर खसंगदोर हेमंत कुमार कॉम दान आयुध फिल्म खामोशी फिया रेडियो SBS तुम पुकार लो।

फिल्म मिम्मी से आपने सुना श्रेया घोषाल और एआर रहमान की आवाज में परम सुंदरी। और अब आप सुनिए, रहना है तेरे दिल में से सच कह रहा है।

एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा का टाइटल सॉन्ग आपने सुना दर्शन रावल और रोचक कोहली की आवाज में। और अब आप सुनिए के और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में फिल्म प्यार में कभी कभी से। दिल से मेरे दूर न जाना तुम मेरी खुशी।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में आपने सुना बेहतरीन गाना फिल्म भावना से। मेरे दिल में तू ही तू है, दिल की दबा क्या करूं, दिल भी तू है, जहाँ भी तू है, तुझ पे फिदा क्या करूं। अगला गाना है फिल्म 14 फेरे से। फिल्म 14 फेरे से आप सुनिए गोरी चढ़के।

सुन वालों, रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। यहाँ से प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर आप सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। कोई चल दिया है अकेला, कोई रह गया है अकेला, ऐ दुनिया के मालिक तूने कौन सा खेल खेला। प्रोग्राम में मृत्यु समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए अर्थात गौर फरमाइए। देन हाग शहर से समस्त दुखित परिवार सतीश और हरप्रीत राम प्रसाद और समस्त लड़कन बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। वोसदाग 22 जुली बुधवार 22 तारीख जुलाई सुबह 4 के वक्त 79 साल नेखनन सुईफंतक साल की आयु में सतीश राम प्रसाद के फुआ, हरप्रीत राम प्रसाद के फुआ सास, दो लड़कन सोहम और स्वर के आजी, देन हाग खेस्तरन वेख के रहने वाली एर्ना सुशीलावती राम प्रसाद की मृत्यु हो गई है, जिन्हें लोग एर्ना के नाम से पहचानते थे और स्वर्गीय सुखराम जयराम जीबोत ब्लाका किशोर के पत्नी थे। अर्थी सोमवार 27 तारीख जुलाई मानदा जुली स्मेडक्स ओम क्वाटफोर द्री क्रेमेटोरियम इपन होफ होफलान नंबर 18 डेल्फ शहर में डाक क्रिया की जाएगी। आरनहेम शहर से समस्त दुखित परिवार राम प्रसाद और बधाई और समस्त लड़कन बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। वोसदाग 22 जुली वोसदाग 22 तारीख जुलाई सुबह 4 के वक्त नेखनन सुईफंतक 79 साल की आयु में सुदेश बधाई के फुआ सास, मीला राम प्रसाद के फुआ, अंजलिना बधाई के नानी, अश्विन भान सिंह के ननिया सास, देनहा खेस्तरन वेख के रहने वाली एर्ना सुशीलावती राम प्रसाद की मृत्यु हो गई है, जिन्हें लोग एर्ना के नाम से पहचानते थे और स्वर्गीय सुखराम जयराम जीबोत ब्लाका किशोर की पत्नी थी। अर्थी मानदाग 27 जुली सोमवार 27 तारीख जुलाई स्मेडक्स ओम क्वाटफोर द्री क्रेमेटोरियम इपन होफ होफलान नंबर 18 देनहा शहर में दाह क्रिया की जाएगी। जिन लोग इस मृत्यु समाचार के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे या समस्त दुखित परिवार को आप शोक सहानुभूति पेश करना चाहेंगे तो तार की नंबर आपको दिया जा रहा है 9-6-49-46-44-44 और दूसरा तार की नंबर है 9-6-85-28-30-01। एर इस खेन बैठक आन हाउस निवास स्थान पर बैठक नहीं है। सुन वालों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है खबर को और जान पहचान वालों तक पहुंचा देने के लिए रेडियो SBS इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में शोक सहानुभूति पेश कर रहे हैं और ऊपर वाला से यही प्रार्थना किया जा रहा है इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में पूरा पूरा शक्ति देने के लिए। रेडियो SBS आप लोगों के दुख में पूरा और पूरा शामिल है। इसी तरह से रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर जो पेश की गई है।

दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, आपने सुना फिल्म रोजा से। और अगला गाना है जय जय शिव शंकर फिल्म वॉर से। ये एक फिल्म है ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का।

तू है अब जो बाहों में करार है, रब का शुक्राना आपने सुना जन्नत दो से। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है जिन्नी वेद सनी से, मिक्का सिंह, नेहा कक्कर और बादशाह की आवाज में। अब सुनिए सावन में।

बहुत खूबसूरत हैं आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी। ये बहुत ही खूबसूरत अल्फाज आपने सुना जगजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म वज से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है चाइना टाउन से। बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज़ है हमारा दिलरुबा।

पैसा ये पैसा आपने सुना टोटल धमाल से, और अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में है जाने तू या जाने ना से। राशिद अली की आवाज में आप सुनिए कभी कभी अदिति, जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है।

फिल्म प्यार तो होना ही था से आपने सुना कुमार सानू की आवाज़ में, जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है जगजीत सिंह की आवाज़ में, फिल्म तुम बिन से आप सुनिए, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे।

0: दिल के किसी कोने में छू लिया है किसी ने तुम्हें।
1: तुम यहां क्या कर रहे हो?
0: बस देख रहा हूं।
1: क्या चाहते हो?
0: मेरे सिवा कोई यह चेहरा कभी ना देखे, मैं उम्र गुजार दूं इन आंखों में।

ऐ दिल इतना बता दे, बेहतरीन गाना आपने सुना हरिहरन की आवाज़ में फिल्म दीवाने से। अगला गाना प्रोग्राम की तो के लहर में है रूही से, सचिन जिगर और मिक्का सिंह की आवाज़ में आप सुनिए भूतनी।

फिल्म फिजा से आपने सुना अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज में आ जमा हिया, और अब आप सुनिए जस मानक की आवाज में फिल्म सरदार का ग्रैंडसन से जी ने करदा।